ज्वाला सी चलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है परवाह है क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है धरती अंबर सितारे उसकी नजरे उतारे डर भी उसे धरा रे जिसकी रखवालिया रे करता साया तेरा हे देवा श्री गणेशा Has your name in his heart, has that fire in his eyes. He isn't worried about how his start is or what the end results are. The earth, sky, stars, they keep him out of troubles. Even fear is afraid of him, whose protector your shadow is, O Ganesha.

0: Presenting to you the gems of the past on your overnight mix on Radio Jagriti 102.7 FM.
1: दोस्तों, आज इस महफिल में कई मस्ताने हैं, एक शम्मा, दो परवाने, एक हसीना और दो दीवाने हैं, लेकिन एक है हीरो और एक है जीरो। अब आप ही बताइए, कौन है हीरो और कौन है

श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये ॐ श्रीदुर्गालक्ष्मी सरस्वतीभ्यो नमः।

धर्म की जय। परंपरा, यस परंपरा, ट्रेडिशंस, व्हेन आवर फादर्स अराइव एंड वर प्लेस्ड ऑन डिफरेंट शुगरकेन एस्टेट्स, दे केम विद देयर होली बुक्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अमंगस्ट अदर थिंग्स। ऑल्दो द डेज वर वेरी स्ट्रेसफुल, दे मेड द टाइम टू असेंबल एंड हैव देयर सत्संग एंड कीर्तन on a regular basis. Today, these traditions have filtered down to our communities and over 250 STMS mandirs throughout our beautiful country. Parampara, therefore, is closely associated with our Dharma. Pandit Kapile Maharaj, STMS Pandits Parishad. Jai Sri Ram.

देखी हर्षक पिरायसिया वर रामचंद्र जी की जय शरणम। बोलो सिया वर रामचंद्र की।

लंका सर के खोत हमारा रत्नागिर सिखाए, लाख असुर की चौथी थारी भाग जाए दुआए और क्या।

जल्दी अगिन से कूद पड़ेगा कोती नगिन न खाए। मेघनाथ से पुत्र हमारा कुंभकरण बल भाई, घर मंदिर से

य दीप ज्योतिर्नमोस्तुते लक्ष्मी करोतु कल्याणं आरोग्यं सुखसंपदां मम शत्रु विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते